0: This is Fresh FM, home of locally grown podcasts. Get involved and make yourself heard. It's 5 o'clock.
1: Morena, beautiful souls. Welcome to the Rise and Shine radio show with Melissa Melodious, right here on Fresh FM. Join me Sunday mornings, 8 a.m. for heartfelt music, messages of hope and inspiration to ignite and encourage us through the ups and downs of life. Every sunrise brings a fresh chance to shine. Life is something beautiful. Let's cherish it. Tune in, 8 a.m., the Rise and Shine radio show on Fresh FM.
2: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।